कत गद्दिगन धकट कत गद्दिगन धाती टी कता गद्दी गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गद्दिगन धा आ धा धान धा टी कत गद्दिगन धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गदि धा आ धा धान धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गदि धा आ धा धान धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गद्दिगन धाती टी कत गदि धा आ टी कत गद्दिगन धकट कत गद्दिगन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धा आ धा धान धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि धा आ धा धान धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि धा आ धा धान धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धा टट कत गदि गन धकट कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धाती टी कत गदि गन धा आ धा धान धाती कत गदि गन धाती कत गदि गन धाती कत गदि गन धाती टी कत गदि धा आ धा धान धाती कत गदि गन धाती कत गदि गन धाती कत गदि धाती टी कत गदि धा आ धा धान धाती कत गदि गन धाती कत गदि गन धाती कत गदि गन धा